0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 फ्रागें फॉर मार 100 यूरो और उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। यह प्रार्थक मोय मेडली अनहेल के सो मेडली। या तू मुझे यू एंड मुझे छू रही है सिम्फन नदीम। या द हेलक्स्ट गाना द हेलक्स्ट सोल्स यो होते हीर बाय दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो। और वो भी अमी जयराम के साथ इस इट अल्टाइड हेलक गनीते मेट या ऑफ एल्क मोमेंट फ्रॉम द डॉग। Ja, de stem van Batja. Laten we die er eventjes ingooien voor de mooie afwisseling. Album kan naam heet Ikthar Raja. Organe kan naam heet Surma. Surma van Batja.

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम जोइटोस कॉर्मलिंकवेग नंबर 1 से सीमित और वैक सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर्स कोऑर्डिनेटोरन और सभी फ्रेविलखर्स बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सनीचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफंतख यार औल्ट वैक सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर श्रीमान स्टैनली हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉम्बी का रहने वाला था। अम्स्टर्डम जोइटोस कॉर्मलिंक वेख नंबर 1 से सिमित और वैक सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर्स कोऑर्डिनेटोरन और सभी फ्रेविलखर्स बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सनीचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफंतख यार औल्ट वैक सेंट्रम कॉर्मलिंक के बहेर्दर अम्स्टर्डम जोइटोस का रहने वाला श्रीमान स्टैनली हीरा की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऑयटफर्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे जात दखांस्तांद एन उर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो इन सभी परिवारों के उजाला रेडियो के साथ भी आखिरी सफर ऐतफार्थ फ्रजोरखिंग इन सभी के दुख में शामिल है।

0: तेरा था।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में एक मौत की खबर सुनने के लिए आप भी गौर करें। अम्स्टरडम से सभी लड़कन नूर मोहम्मद बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं कि आज कल होना चाहिए, कल मंगलवार को 85 साल की उम्र में फैफन तख्तख यार औत लड़कन एस्टर मेफिस फारूक हंस हेनरी म्यूरियाओ और शेख नूर मोहम्मद की माँ सभी लड़कन के दादी नानी परदादी और परनानी अम्स्टरडम जैतोस कॉर्टफोर्ट की रहने वाली बेवा हज्जा सहीदन अलादीन नूर मोहम्मद की वफात अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले वेलखलीखन ओकरसरा दो के रहने वाली थी। अम्स्टरडम से लड़कन नूर मोहम्मद बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं कल मंगलवार को 85 साल की उम्र में फैफन तख्तख यार औत सभी लड़कन एस्टर मेफिस फारूक हंस हेनरी म्यूरियाओ और शेख नूर मोहम्मद की माँ सभी लड़कन के दादी नानी परदादी और परनानी अम्स्टरडम जैतोस कॉर्टफोर्ट की रहने वाली बेवा हज्जा सहीदन अलादीन नूर मोहम्मद की वफात अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले वेलखलीखन ओकरसरा दो के रहने वाली थी। दीदार करने के मौका है आज दिन में 10 बजे से 1 बजे तक मॉस्के मस्जिद तकवा खेनरात और सरात 6 अम्स्टरडम में और इन्हें आज दिन में 2 बजे आज दिन में 2 बजे जनाजा नमाज पढ़ने के बाद बदर कब्रस्थान पर दफनाए जाएंगे। पता है दानियल खुद को सरात आलमीर में और मालूमात के लिए तार का नंबर है 06-24-22-05-94 सुनने वालों से गुजारिश है खबर को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो इन तमाम रिश्तेदारों की गमी में शरीक है।

Namaskar, assalamu alaikum, sasriyakaal, een hele goede morgen. Van harte welkom bij Ujala Radio. हाँ जानी पहचानी आवाज है ना, दिल से मैं हूँ कविता रानी, आपकी जानी पहचानी तुम ही हो प्यार मेरा। स्वागत करती हूँ आप सभी को तहे दिल से।

तो रब ने भेजा है तुम्हें दुनिया में मेरे लिए, क्या ख्याल है? आज के ओपनिंग ट्यून कैसा लगा? वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम। दिस इज यू आर एंड दिस इज कविता राय। व्हेरेवर यू आर, यू लिसनिंग टू यू आर।

तो रब ने भेजा है तुम्हें दुनिया में मेरे लिए। और अब आज से ये ओपनिंग ट्यून मेरे हिस्से के प्रोग्राम में होगा, इसी से शुरुआत करूंगी मैं। तुम ही तुम हो मेरी निगाह में, क्योंकि आप सब रहते हैं मेरी निगाह में।

सबसे अलग शान कुणाल एंड गायत्री गांजा वाला हेमचंद्र नीनीरा जोशी और बहुत से लोग आपको याद होगा इस फिल्म में काम किया था। अक्षय कपूर एंड दिया मिर्जा वेरी ब्यूटीफुल फिल्म सबसे अलग। उजाला रेडियो है ये कविता रानी के साथ। फूलों की तन्हाइयों पे नशे मन बनाइए, फूलों की तन्हाइयों पे नशे मन बनाइए, बिजली गिरे तो जश्न चरागा मनाइए। कब से सुलग रही है जवानी की गर्म रात, कब से सुलग रही है जवानी की गर्म रात, जुल्फे बिखरा कर मेरे पहलू में आ जाइए।

भीगी भीगी तेरी जुल्फे, कलियों के अंग अंग में मीठा सा दर्द है, कलियों के अंग अंग में मीठा सा दर्द है, बीमार निखटों को ज़रा गुदगुदाइए। और प्रोग्राम भी सुन रही है आरती België में। हाय आरती, फन हार्ट वेलकम बे ओंस। रीता सुतरमेर में प्रोग्राम सुन रही है, आपको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। और आलमेर में है रेशमा गोपाल एंड रीतिका। हाय रीतिका, रीतिका दी इज़ अ बीच सिक, या से सिक दन, या कान नी बीच सिक बेन, यू बेन सिक ऑफ यू बेन नीट सिक। रीतिका इज सिक, है रीतिका, वी वेंसन यू हील फील बेटरशप एंड आई प्रोबेर स्ट्रक्स अ हील लुक लीडज फॉर यू टू ड्राइव।

मिले हो तुम हमसे, मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से। और गीत का लेखक ये शख्स है और सांस भी इसी शख्स ने सजाई इस गीत के वास्ते। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। दिल को अपने सजा ना दे यूं ही, दिल को अपने सजा ना दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए।

चुराया है तेरी नज़र ने मेरे दिल का सब्र और करार, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। कल जवानी का हश्र का क्या होगा, कल जवानी का हश्र क्या होगा, सोच ले आज दो घड़ी के लिए। हर कोई प्यार ढूंढता है यहाँ, हर कोई प्यार ढूंढता है यहाँ, अपनी तन्हा सी जिंदगी के लिए। वक्त के साथ साथ चलते रहे, वक्त के साथ साथ चलते रहे, बस यही बेहतर है आदमी के लिए। Volgende liedje is heel speciaal voor Ritika. Ritika, je bent ziek. Van harte beterschap namens het hele team van Ujala Radio. En dan wil ik een shout-out nog brengen aan de heren van de ambulance dienst hier in Amsterdam-West van de OLVG. Heren, heel veel plezier vandaag met je werk en blijf lachen. Jullie weten het, jullie zijn nodig, jullie zijn keihard nodig. Een shout-out naar Emilio en zijn collega. En je weet het, 020-363-0808. Als je een WhatsApp berichtje wil sturen, 020-363-0808.

0: पलकों पे सजे चाहत के सपने और बहुत लोगों के पलके पे दिल में ध्यान में बसे हुए हैं बहुत सी सपने। चलो हम चलते हैं कॉफी टाइम की तरफ। हे ये फोन दौलत, नो नो नो,
1: इट्स अबाउट
0: यू एंड मी
1: हनी।
0: तो आपने अपने कॉफी चाय शरबत या जो भी आप पीने वाले हैं तैयार रखे हैं, लेट्स चीयर्स।
1: तुम मिलो तो
0: आप सभी के एक शुभ मुबारक सुबह पेश है।
1: तुम मिलो
0: आप जहां पर भी हो, जिस हाँ में हो, प्रोग्राम को सुन रहे, मेरी आवाज को सुन रहे, मेरा प्यार भी आपके दिल तक पहुंचे। लात चीयर्स।

0: तुम मिलो तो सही,
1: बार कॉफी
0: थोड़ा सा गपशप हो जाए। नो ट्विन तो द्री सस द्री नो अख नो अख पर
1: की दूरी
0: दैट इज नंबर WhatsApp nummer voor de studio 020-363-0808. Lekker zeg Yvonne. Thanks for joining with Coffee Time. Denk eraan, याद रहे हम तेरे दिल में रहेंगे एक याद बनकर, हम तेरे दिल में रहेंगे एक याद बनकर, तेरे लब पे खिलेंगे मुस्कान बनकर। कभी हमें अपने से जुड़ा ना समझना, कभी हमें अपने से जुड़ा ना समझना, तेरे साथ चलेंगे आसमान बनकर। Twaalf minuten over tien, studio tijd. Wat een lekker weertje. Geniet van elk moment van de dag. Want je weet niet hoe lang je dat nog mag. Zo is dat toch? Hey, oef, maar.

And उफ यू माँ, ये गुस्सा तेरा ये गुस्सा मेरा, और अगर कोई नाराज है तो उसे मना लो, कोई दूर है तो उसे पास बुला लो, क्या ख्याल है, और जो पास है उसे गले लगा लो। Hey, hallo, Roy Paraag vanuit Londen. Elke keer weer van een ander hoekje in de wereld. Roy, rij veilig. Maar ik hoop dat alles goed gaat met Vivienne en de kinderen. Ja, ik ben er hoor. And strong as ever. Wherever you are, you're listening to You Are Ujala Radio with KR.

मरमरी बाहें संदली सांसें बस तेरी ओर ले चली। लवली ये सॉन्ग आपने सुने हैं यू आर के जरिए। याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में। हमें मत ढूंढना दुनिया के भीड़ में, हमें मत ढूंढना दुनिया के भीड़ में, हम मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी परछाई में। हे विनोद चकौरी, दिस ऑफ द वेग, रे फैलख।

जो मांगी हुडा से कुनाल जंगांजा वाला से आपने गीत को सुना है, सावन द लव सीजन। जो मांगी हुडा से वंस अगेन कुनाल गांजा वाला।

से यूं मिलेंगे हमने ये सोचा ना था, तो क्या कब जो सोचते हैं वो होता है, जो आप नहीं सोचते हैं बस वही हो जाता है। यही तो जिंदगी है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। दिन लंबे हैं रातें लंबी हैं, दिन लंबे हैं रातें लंबी हैं, दिल के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। आज फिर एक याद सता रही है, आज फिर एक याद सता रही है, दिल की गहराइयों में झांक के देख, परदेश में आज भी तेरी याद

Hey, Toba, tumhari ye ishare, Abhijit Analka ji se. Keep on smiling, pass it on to others, so the whole world would be smiling. Bas aapke chehre pe muskuran hona chahiye. मुस्कान होना चाहिए, मुस्कुराते रहिएगा। एक शुभ और मुबारक दिन आप सभी को पेश है। शायद आप गाड़ी में हो तो गाड़ी को संभाल कर चलाना, रास्ते के हालात पर जरूर से ध्यान देना। लेट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द वेग एंड ड्राइव फैला, यू ड्राइव सेफ, आपका सफर सफल हो।

कठिन तेरी राहों में ये दिल ना कह सका ये बातें। उजाला रेडियो है ये, और अगर मैं घड़ी की तरफ ताकूँ तो 11:45 का वक्त है, 11:15 प्रसिस। और एक गीत मैं निकाल कर आपको सुनाती हूँ बाबू सुप्रियो की आवाज़ में, फ्रॉम द फिल्म दिल विल प्यार वार में।

तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, कहना है आज तुमसे। हम सांस कम उनका नाम ज़्यादा लेते हैं, हम सांस कम उनका नाम ज़्यादा लेते हैं। एक वो है जो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम लेता है। काश वो भी हमारी तरह दिल से काम लेते, काश वो मेरी तरह दिल से काम लेता, तो शायद सांस कम और हमारे नाम ज़्यादा लेता।

कहता है ये मौसम और पंछी से पूछेंगे तुम्हारे पता। तूती हुई सजा हूँ कभी याद कीजिए। भूली हुई बात हूँ कभी भी याद कीजिए। और सौदेबाजी

सौडेबाजी और आपने कमर्शियल ब्रेक्स सुने हैं. हे दिस इज यू आर एंड दिस इज कविता रानी. व्हेयरएवर यू आर यू लिसनिंग टू यू आर. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 020-363-0808. शून्य 2 0 3 6 3 0 8 0 8 पर आप हमें ज़रूर से एक मैसेज भेज सकते हो. हे बेल्जियम में प्रोग्राम सुन रही है निधियाना. हे निधियाना कुशस फनाइट अम्स्टरडम हेल स्पेशल फॉर यू. बढ़ते हैं कुणाल गांजवाला एंड गायत्री आयर की आवाज़ों में. कोई बस मुझे इतना बता दे कि जब उनकी याद आए तो हम इस दिल को समझाने कहाँ जाए. याद जब आए तेरी तो तुझे याद कर लिया.

हम तुम वक्त बदले ये दिल न बदलेगा, वक्त बदले ये दिल न बदलेगा, तुमसे रिश्ता कभी न टूटेगा। तुम ही खुशबू हो, तुम ही खुशबू हो मेरे सांसों की, तुम ही मंजिल हो, तुम ही मंजिल हो मेरे सपनों की। वक्त बदले ये दिल न बदलेगा, तुमसे ये रिश्ता कभी ना टूटेगा। हम तुम और प्यार किया तो डरना क्या। Een hele goede morgen, Simarani uit Almere. Welkom. En je zag er echt heel leuk uit zaterdag op Brassafest. Ik hoop dat je hebt genoten.

तुम परी हो, परियों की बातें सुनाते हो, खुदाया खैर। सोहम, आकृति एंड मोनाली से आपने सुने हैं। इस गीत के बाद में चलेंगे कुछ पुराने गीतों की तरफ।

आ रहा है मज़ा और सुन रहे हैं धुन मेरी दिल की सज़ा अलका जी एंड कुमार सानू। क्या आवाज़ें हैं ये दोनों, इन दोनों को जब वो गाते हैं तो गीत में इतना सा एनर्जी होता है और उन लोगों के म्यूज़िक में कितना मज़ा होता है। इन दिनों के गीतों में मैं कम कह सकती हूँ कि ऐसे होता है, ऐसा ऐसा गीत सुनने के लिए फिर हम बैठ जाते हैं और गीत दिल को बहलाते हैं।

पुराना गीत पेश है उजाला रेडियो के जरिए, पुराने गीतों के शौकीनों के वास्ते। सुना था वक्त मरहम है, सुना था वक्त मरहम है, हर जख्म भुला देता है।

हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। फैबुलस सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज़ में अर्दी बर्मन ने बेहद ही खूबसूरत साज सजाए। सुना था वक्त मरहम है, हर जख्म भुला देता है, हर गुजरा लम्हा हमको तो एक नया जख्म देता है। रात की रानी है या तेरी यादों की खुशबू, रात की रानी है या तेरी यादों की खुशबू, कुछ तो है जो आंगन मेरे एहसास को महका देता है। घर तेरा ख्यालों में खोकर, घर तेरे ख्यालों में खोकर नींद आ भी जाए, आकर ख्वाबों में तेरा तसव्वुर हमको जगा देता है।

हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या आवाज है और क्या गीत है, सीरा आके दिल पे लग जाता है। खुश होते हैं तसव्वुर में तुम्हें करीब देखकर, खुश होते हैं तसव्वुर में तुम्हें करीब देखकर, शायद मिल न पाए हम ये हादसा सहमा देता है। दिल बहुत नाजुक है गम से भर ना आए क्यों, दिल बहुत नाजुक है गम से भर ना आए क्यों, पत्थर पे चोट लगे तो वो भी सजा देता है, पत्थर पर चोट लगे तो वो भी सजा देता है। दुश्मन है ज़माना मोहब्बत करने वालों को अरसे से, दुश्मन है ज़माना मोहब्बत करने वालों का अरसे से, इन दूरियों जुदाइयों का एहसास रुला देता है। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूला। Een hele goede morgen nazi uit het zonnige Antwerpen. Een hartelijk welkom bij ons.

इकरार हुआ है प्यार से क्यों डरता है दिल। प्यार सारे तो करते हैं, प्यार सारे करते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई जान देता है, कोई जान देता है और कोई जान लेता है।

0: रुख से जरा नकाब
1: उठा। दिस वन इज डेडिकेटेड फॉर माय सिस्टर मरीता, मरीता लक्ष्मण,
0: तेरे दुबारा
1: मरीता लक्ष्मण
0: मेरे
1: इन देन हा इसी के साथ मैं रुखसत हो रही हूँ। सभी फैंस से मैं ये कहूँगी, आपने साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। सलाम खलास, थैंक यू ली वेल फॉर यू ली बैद्राए। En ik zou zeggen tot de volgende keer. Geniet van deze zonnige dag. Met volle teugen natuurlijk. Ik vond het weer fijn om bij u te zijn. Signing off for Ujala Radio. KR signing off for you are. Milenge phir aapse. अच्छा से रहना, अपना ख्याल जरूर रखना।
0: मेरे हुजूर,
1: लव यू ऑल एंड बाय। नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

0: के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तखियार औत बीबी साहिबा जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टरडम जोइटोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में और इन्हें जीवित में लोग स्टेनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कॉम्बी का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार हीरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 78 साल की आयु में अख्तन जीफन तखियार औत बीबी साहबा जमीला खातून मिला हीरा बंधु का पति लड़कन क्लाउड क्लाइड और अनुष्का हीरा के पिता अनग्रासिया नंदलाल का ससुर इसाबेला एनरिके और शेन हीरा के आजा जिया हीरा का नाना अम्स्टरडम जोइटोस का रहने वाला श्रीमान चंद्रभान कृष्णा सुरेंद्र कुमार हीरा की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में स्टेनली हीरा के नाम से पहचानते और पुकारते थे। पहले पारामारिबो कॉम्बी का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल बीफे रात के 7 बजे से 8 बजे तक आउटफार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे जातरख आंस्तांद इन उर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 तक अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्थ फ्रजोरखिंग समस्त परिवार हीरा के दुख में शामिल है।
1: बस

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में एक मौत की खबर सुनने के लिए आप भी गौर करें। आम्स्टरडम से सभी लड़कन नूर मोहम्मद बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं कि आज कल होना चाहिए, कल मंगलवार को 85 साल की उम्र में फैफन तख्तख यार औत लड़कन एस्टर मेफिस फारूक हंस हेनरी म्यूरियाओ और शेख नूर मोहम्मद की माँ सभी लड़कन के दादी नानी परदादी और परनानी आम्स्टरडम जैतोस कॉर्टफोर्ट की रहने वाली बेवा हज्जा सहीदन अलादीन नूर मोहम्मद की वफात आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले वेलखलीखन ओकरसरा दो के रहने वाली थी। आम्स्टरडम से लड़कन नूर मोहम्मद बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं कल मंगलवार को 85 साल की उम्र में फैफन तख्त यार औत सभी लड़कन एस्टर मेफिस फारूक हंस हेनरी म्यूरियाओ और शेख नूर मोहम्मद की माँ सभी लड़कन के दादी नानी परदादी और परनानी आम्स्टरडम जैतोस कॉर्टफोर्ट की रहने वाली बेवा हज्जा सहीदन अलादीन नूर मोहम्मद की वफात आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले वेलखलीखन ओकरसरा दो के रहने वाली थी। दीदार करने के मौका है आज दिन में 10 बजे से 1 बजे तक मॉस्को मस्जिद तकवा खेनरात और सरा 6 आम्स्टरडम में और इन्हें आज दिन में 2 बजे जनाजा नमाज पढ़ने के बाद बदर कब्रस्थान पर दफनाए जाएंगे। पता है दानियल खुद को उपसरात आलमीर में और मालूमात के लिए तार का नंबर है 06-24-22-05-94 सुनने वालों से गुजारिश है खबर को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो इन तमाम रिश्तेदारों की गमी में शरीक है।

बिन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है सुन वालों। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: ए बापू।
1: अरे की है बरखुरदार,
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं हूं लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान पिछोरी, मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय की कहे की कहे, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
2: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ

0: बदले में राजा से एक एक के हजार लाऊंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात, ले ले बढ़ा दो हाथ,
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: मारी सारी उम्र की कमाई गई डॉलर है।
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।
3: बाप

0: Rusland ja, Lana?
1: Rusland.
0: Rusland wel, ja.
1: Svetlana, Svetlana.
0: Svetlana. Klasebol Svetlana,
1: ha. Nou, ik kwam Big Deli Sarek, hè.
0: China.
1: Vladimir, Vladimir ke Big Deli. Oh, nee, ja. Nee. Vladimir, nee, Svetlana.
0: Ha.
1: China wali Conchita, Lina.
0: Li, ha. Li.
1: Ook okay, Big Deli.
0: Big
1: Deli, ha. Nou, wali, Uran hoi gera, bechari. Ik kon nou, wali, ra, klimati.
0: Klasebol
1: Kabul,
0: ha.
1: Ik kan altijd iemand anders de schuld geven, de Lloyd. Dat is niet mijn schuld. Ham Thoroboli.
0: Klasebol Wobbly. Klasebol Wobbly zeggen, toch? Ja.
1: I Ham Thoroboli wat in Tijuana. Dus wij komen er altijd onderuit. Dus Klasebol Wobbly, ne Kabolega.
0: Kabolis.
1: Hooguit, ik had mijna Orobole.
0: Hooguit, een paar maanden.
1: Dus oktober met Jana Gidit, ik had mijna Oro.
0: Ja, dit.
1: Dekle toch?
0: Ja.
1: In Klasebol Wobbly, in Okwabole.
0: Ja, in Okwabole.
1: Oh, je, hoe nam je dit keer? Kijk op Bulgaarse Klasebol Wobbly. Bulgarije wel iets sarek.
0: Maar het speelkwartier voor Jet is nog niet voorbij.
1: Alles zag er... Het zag er wel slecht uit, hoor, moet ik zeggen.
0: Het zag er wel slecht uit, ja.
1: Maar hij heeft zich op een of andere manier kennelijk eruit kunnen redden. Maar het is heel zwak, het akkoord.
0: Ja.
1: Dus ook met Labadie, die afspraken die zijn niet heel helder en heel hard.
0: Ja.
1: En hij heeft links en rechts wat geld eruit kunnen halen. Ieder Torah bezuiniger is, ieder Torah deze... Onze miljarden schuld, John Heiga,
0: wordt alleen maar meer.
1: Maar onze rentelast, Lloyd, wordt enorm hoog ook.
0: Behoed,
1: is niet erg, is niet erg. Nederland kan het dragen.
0: Yeah.
1: Maar Nederland is het braafste jongetje van de klas, toch? Houdt zich aan allerlei regels, monetaire regels, afspraken, et cetera, et cetera. Dus Nederlandse economie, John Heiga, behoed mooi georganiseerd.
0: Zeker, zeker.
1: Controlesysteem behoed mooi, maar dit is wat behoed, Hanni.
0: Maar behoed bij Heiga,
1: बहुत ज्यादा अति अति ज्यादा खाली हम लोग गरीब आती जनता मदेसवा बहुत ठंडा ठंडा ठंडा बहुत धनी
0: बहुत धनी बहुत गर्म है दसवा हां
1: तो त्रोंस ठंडाई आवेगा चलो इत बचाई करेंगे
0: ठंडाई आवे त्रोंस एक ग्लास फन हिट गोल्फ कमt er weer aan in Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Dus ja, als het in die landen komt, dan komt het ook een beetje aan deze kant ook.
1: हाँ बाकी अब बड़ा मोई खलेगा आवेगा अब यहाँ पे ठंडा हुई थोड़ा
0: हाँ धीरे धीरे
1: सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक ठंडा हो जाएगा
0: अच्छा
1: सीकर
0: अच्छा
1: पार वही के बोलो खुद वेर दुस लातो दरफा खनी था अगेन सितंबर के खूब खनित करे कोई मोई वेर दन वोर तो ताल इच कोडर
0: या
1: मैं वेट दैट हैव ओक्स ऑन शार्म सो लॉन्ग
0: ट्यूलिक ट्यूलिक ट्यूलिक हेल
1: वन दन कुन यू वैकेंसी गान अ वीक या
0: कहूं
1: दूर तो कहूं दूर जाइए वकांसी पे एन दन अरे दूर ना अरे फिर फाइव यूर चेस फ्लीग
0: बोल ले अरे स्पेन जा जहां पे हेट गोल हैंग एंड सो एंड सो
1: दैट सिट इन अ लैंड वेयर 20 ग्राद इज
0: या ऑफ वार्म
1: मत
0: ऑफ वार्म
1: दैट सिट इन नीदरलैंड मत 10 ग्राद दैट 20 ग्राद हेरलक हेरलक बड़ा मोई लगेगा
0: लोग हुई दैट हम नहीं टू कन्या सुतर ले आज से वेर भी सुतर ले अबे नेट जगले बट हम नहीं
1: बड़ा जोर से थी
0: बट एक वेट ऑफ योर न्यूज़ एक वेट ऑफ योर न्यूज़ हैव गेवोल्व मा ओवर असल में का हो गया एक zag bijna meer dan 30 personen iemand gaan ja aanvallen om drugs terug te halen of wat dan ook. Kahoy over Assel in Nijmegen of Gelderland. Hè? Provincie
1: tamasa,
0: Gelderland.
1: Tamasa. Maar moet je één ding realiseren. Dheer sunne walo janat hoi, dheer sunne wala saad na janat hoi bhe. Dus is ab tamasa hovega niche, Nederland ke niche.
0: Nederland ke niche.
1: Dus na uparwa,
0: na.
1: Maar nichua jon haiga, dus richting Duitsland, België, वहां पे ऊ दुर्पोन में ऊ खमेंतन में इस तमाशा हो कस के
0: मैं सोची कि
1: बहुत जबर ड्रग्स हम
0: बड़ा बदमाश लोग वहां पे रहेगा बड़ा बदमाश
1: बहुत जोर
0: बड़ा बदमाश
1: बहुत जोर जाने का एक हाथी जगह है बड़का बूर बूर बदराइफा हैगा बड़का बड़का रोइमतस हैगा एकवा ना जाने एकवा लगे का होएगा दोष के इंसान आलस दूंदार दोष धीरे धीरे वहां इतना बड़का हो गया बा इंडस्ट्री वा ड्रग्स इंडस्ट्री इट इज नीट नॉर्मल उस अपना पहिए दूसरा जगह में देसुआ में उधरे पहिए दोस पहले जो बूरू रहा बूर
0: या
1: उस अब होइगे जैसे क्रिमिनल इसाइट
0: इस तो वत
1: एंड से हैव हन पंदे फरहुर्ड से हैव लोकेशंस फरहुर्ड दोस या वहां पे बड़ा बपाल होइगे यार दोस एक द पुलिसी
0: या एक हम
1: एक
0: या हां
1: एक देन द ओवरहेड पुलिसी जस्टिसी एटसेट्रा एटसेट्रा फेल मोर फोकस मोट लेगेन दार इन दी गबीडे En niet alleen maar hier. Dus ook er moet meer capaciteit komen.
0: Ah.
1: Opsporingscapaciteit.

उजाला रेडियो हर काम काज के लिए चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl यू आर उजाला रेडियो तू जाने तो रिंग।

6:10 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये है आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। नया महीना है मेरे प्यारे सुनने वालों, न्यू मंथ सितंबर का महीना है और आज इस नए महीने का पहला बुधवार। वादा के मुताबिक आप सभी की सेवा हम फिर एक बार करने चले आए हैं, लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और वो भी अब से रात्रि में 9 बजे हम और आप मिलकर फिर कुछ पुराने यादें जो हैं मिलकर ताजा करेंगे। और बैक टू द फ्यूचर आज फिर एक बार लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से बनाया जा रहा है। तो हमारे सभी प्रिय सुनने वालों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप जहां पर भी सुनते होंगे, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती होंगी। उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं ना जाने कहां कहां, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी ने भरपूर एंजॉय की है। कुछ हफ्तों के लिए अन्नु मलिक जी का प्रोग्राम हमने सजाए थे, आज एक और महान कलाकार का प्रोग्राम हम सजाने जा रहे हैं। उनका 2 या 3 प्रोग्राम सजाएंगे, आज पहला है। नाम है उसका शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र सिंह एक महान ग्रेट सिंगर जिसकी आवाज अलग सा है, खूबसूरत है और बहुत सारे हिट सॉन्ग्स इन्होंने हमें दिए हैं जो आज तक भी हम पसंद करते हैं। और वक्त बीत जाएगा और फिर भी जहां तक मेरा ख्याल है 50 साल 100 साल भी हो सकता है बाद में भी हम इनके गीत सुनेंगे और बहुत ही आनंद लेंगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज जैसे मैंने कहा, और उनके हिट सॉन्ग से आज हमने प्लेलिस्ट को सजा रखा है। एंड नॉट टू लुक, उनका कुछ भूला हुआ हीरा जो है, सॉन्ग्स जो हिट नहीं हुआ लेकिन फिर भी खूबसूरत है, आज भी प्लेलिस्ट में शामिल है। तो सभी को हम यही कहेंगे कि आप भरपूर एंजॉय करें। कुछ जाने पहचाने नगमाए शैलेंद्र सिंह जी का आप सुनेंगे और कुछ कम जाने पहचाने नगमाए भी सेवा में हम पेश करने वाले हैं। मेरे प्यारे सुनोलो, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान हमेशा की तरह अगर व्हाट्सएप के जरिए बातें भी करना चाहोगे तो ये मुमकिन है 020-363-9000 पर आप ऐप कर सकते हैं। आपका ऐप सीधे यहाँ स्टूडियो में आएंगे और जवाब नतुलक अल्टाइट। और है आपके कामों काज के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, जैसे कि फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप तार करें दफ्तर के तार पर, वो भी दफ्तर के दिन सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक। उजाला रेडियो का दफ्तर का तार का नंबर है 02-04-09-08-07 020-09-08-07। या तो लगातार 24 घंटे 7 दिन किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल, और आप दुनिया के जिस कोने में भी होंगे आप मेल के जरिए info@ujala.nl अपना कामों का आज भी दिवा सकते हैं। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक पॉपुलर सॉन्ग है शैलेंद्र सिंह जी का और टुगेदर विद किशोर कुमार और महेंद्र कपूर जी के साथ मिलकर गीत गाए थे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों और जिसका संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो शैलेंद्र सिंह जी, किशोर जी और महेंद्र कपूर जी का गाने वाले हैं, आप तो फिलहाल सुनेंगे। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंटोनी और ये फिल्म 1977 का है। पेश है सेवा में

अनहोनी को होनी कर दिए तो होनी को अनहोनी। शैलेंद्र सिंह जी, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर जी की आवाजें, खूबसूरत नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ मिलकर तीनों ने गाए हैं, और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। अमर अकबर अंथोनी का ये तो टाइटल सॉन्ग है मेरे प्यारे सुनने वालों, मूवी 1977 का है, नी हतीन सीवन सीवन तक। मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया है, और द बिग बी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म में। और इन सभी के अलावा जीवन ने भी काम किया है नीतू सिंह, प्रवीण बाबी, प्राण साहेब जी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, मुकुरी रंजीत, नादिरा, नाजीर हुसैन, कमल कपूर, हेलन मूलचंद और ना जाने कितने और लोग, यूसुफ खान भी, हाँ जी, जविस्को। मेरे प्यारे से नौलो, फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी को। ये उजाला रेडियो है, मैं हूँ रतन, और आप सभी को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। बैक टू द फ्यूचर पेश कर रहा हूँ, और दो तीन प्रोग्राम हम सजाने वाले हैं। जब से प्रोग्राम बनाता हूँ, इनका प्रोग्राम कभी बनाए नहीं, इनके गीत जरूर चलाए हैं तरह तरह के प्रोग्रामों में, लेकिन इनकी स्पेशल हमने बनाए नहीं। और आज पहला बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ शैलेंद्र सिंह जी का। 8 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनोलो, सरी 6 बजने में हर एक घंटे पर हीरो निवार आप सुनेंगे इश्तिहारे, देश विदेश का समाचार, मौत की खबरें भी है आज अफसोस के साथ। 7 बजे के इश्तिहारों के बाद मौत की खबर भी है, और याद आते मिंद्र लोक। लेकिन जो भी है, जैसे है, प्रोग्राम हम चलाएंगे, और मैं ले चलता हूं आपको अगले खूबसूरत गीत की ओर जो शैलेंद्र सिंह जी ने गाए हैं। अब की बार नगमा निकालेंगे 1975 का फिल्म जिंदा दिल, एक फिल्म जिसमें से गीत निकालेंगे वर्मा मलिक जी का लिखा हुआ एक हैप्पी सॉन्ग है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वंस अगेन संगीतकार है, और फिर एक बार महेंद्र कपूर जी साथ देंगे, लेकिन अब की बार लता जी के साथ। और शैलेंद्र सिंह जी क्या गाने वाले हैं कि शाम सुहानी आई खुशियां बनके, आज देखो ना पहली बार।

शाम सुहानी आई खुशियां बनके पहली बार। शैलेंद्र सिंह जी, लता जी और महेंद्र कपूर जी ने गीत मिलकर गाए हैं। वर्मा मालिक जी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम जिंदा दिल। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1975 का ये फिल्म है। सिकंदर खन्ना ने जो डायरेक्ट किया है और जिसमें ऋषि कपूर ने प्राण के साथ काम किया है, और इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ सहिरा भी है, नीतू सिंह, आयुष जौहर, रुपेश कुमार, राज मेहरा, क्या नाम है, पिंचू कपूर, हाँ जी पिंचू कपूर ने भी मूवी में काम किया है। मेरे प्यारे सुनो, आप देख रहे हैं ओपनिंग सिलेक्शन, अनहोनी को होनी करना, और ये गीत शाम सुहानी आई, जिससे नालामाल मोई फरमाइश लीचेस पहले फरमाइश किया जाता था, आजकल बहुत कम किया जाता है, अथवा स्टेट्स मॉडर्नर मॉडर्नर, लेकिन इन गानों में इतने सारे खूबसूरत शब्द हैं जो उन दिनों लोग पहचानते थे, समझते थे और फरमाइश किया करते थे। एंड यू हैव अ स्टेट्स तत्वार्ध, और आपको तो मालूम है उजाला रेडियो पर 15 फरमाइश फनफ होंड तेरो तू जाने तो। हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सिने वालों 1985 एक जवेद अख्तर जी का लिखा हुआ नगमा। अब की बार शैलेंद्र सिंह जी गाएंगे टुगेदर विद नाइटिंगेल आशा जी, और वो भी आर डी बर्मन, राहुल बर्मन की साज और संगीत पर। फिल्म सागर की बात हम कर रहे हैं, और शैलेंद्र सिंह जी के जो प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सिने वालों, इनके कुछ जाने पहचाने नगमाएं हैं और कुछ कम जाने पहचाने नगमाएं पेश करूंगा आज का ये पहला प्रोग्राम में। तो गीत का बोल है जाने दो ना, हे पास आओ ना, तो पेश करता हूं हीरा जुआर।

रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे से नवालो जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ, मिलकर गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी और नाइटिंगेल आशा, और वो भी आर डी बर्मन, राहुल बर्मन की साझा और संगीत पर। 1985 का फिल्म सागर से हमने नगमा को निकाले। फिल्म 1985 जिसका डायरेक्टर रमेश सिप्पी, ऋषि कपूर, कमल हसन, डिंपल कपाड़िया, शाहिद जावड़ी, शाफी इमामदार, नदीरा जी, ए के हंगल और सतीश कौशिक भी है मूवी में, किरण वीरेल, गोगा कपूर, सुभा खोटे, शरद सक्सेना, जयराज। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, और 8 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 6 बजकर। जैसे मैंने कहा 7 बजे मेरे प्यारे सिनोल इश्तिहारे के बाद अफसोस के साथ भी मृत्यु समाचार, मौत की खबरें भी है प्रोग्राम में, जो पुकारा जाएगा उजाला रेडियो के जरिए। एनतुलक तमाम सूचनाओं के बाद सेफ यूर के तमाम सूचनाओं के बाद सेवा में फिर नतुलक हाजिर रहेंगे। ले चलते आपको वो मूवी की ओर जिसके साथ शैलेंद्र सिंह जी काफी मशहूर हुए हैं, और ये फिल्म का 2 नगमाएं आप तक हम पेश करेंगे आज की ये प्रोग्राम में, जहां पहला गीत जो पेश करेंगे एहल क्या दारिन से तत्वी लीचस मार एहल घोर से बैलकार। फिल्म बॉबी की बात हम करते हैं मेरे प्यारे सिनोलो, जहां शैलेंद्र सिंह जी को एक चांस मिला गाने के लिए, ऋषि कपूर को इंट्रोड्यूस किया गया था एस ए न्यू हीरो, और राज कपूर जी द ग्रेट शोमैन ने सोचा इस नए हीरो के लिए एक नया आवाज भी चाहिए, और क्या आवाज मिला उनको और क्या नगमाएं गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी। उनके तो तकदीर एकदम नल से एकदम हॉन्डेड चला गया, और बहुत सारे खूबसूरत नगमाएं उसके बाद मिलता गया, फिल्मों में इन्होंने गाए हैं, और आज एक छोटा सा झलक हमारी ये प्रोग्राम में बैक टू द फ्यूचर में आप तक पेश कर रहा हूं। बॉबी ने हिंदी द्रियन सीफ तक का फिल्म है मेरे प्यारे सिने वालों, 1973 और विठल भाई पाटिल जी का लिखा हुआ पहला नगमा आपको सुनाने जा रहा हूं, कि ना मांगू सोना चांदी और झूठ बोले कौवा काटे। ये गीत हमेशा लोग कहते कि 2 नगमाएं हैं, होगा भी शायद, लेकिन फिल्म में एक गीत था और उस तरह से हमने भी सोचा कि इस तरह से हम पेश करें आपके लिए। तो शैलेंद्र सिंह जी वो नगमा गाएंगे मन्ना डे जी के साथ और लता जी के साथ, और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। और उसके बाद में शैलेंद्र सिंह जी का सबसे मशहूर नगमा डेंकिक तो न्यूटू, उनके करियर का सबसे बेस्ट सॉन्ग, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हसीन। तो ये नगमाएं पेश कर रहा हूं मेरे प्यारे सुनवालों सेवा में, और उसके बाद में आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर मिलेंगे।

मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन। और उससे पहले गीत ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती और झूठ बोले कव्वा काते, शैलेंद्र सिंह जी की ये नगमाएं हमने आप तक पेश किया है फ्रॉम द मूवी बॉबी। और विठल भाई पटेल और ये आखिरी आनंद बख्शी जी का एक फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग शैलेंद्र सिंह जी ने गाए हैं मिलकर मन्ना डे जी के साथ और लता जी के साथ। बॉबी फिल्म का नाम मेरे प्यारे से नौला इतनी खतीन दरी इंसीफ 1973 का मूवी है। राज कपूर द ग्रेट शोमैन फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, प्रेमनाथ प्राण, अरुणा रानी, प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल, दुर्गा खोते, सोनिया सानी, पिंचू कपूर, जगदीश राज, इन सभी का फिल्म। मेरे प्यारे सुनो वालों एक आखिरी गीत हम सेवा में पेश करने जाएंगे, उसके बाद 7 बजे की इश्तिहारे आप सुनेंगे। और अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि मृत्यु समाचार भी पुकारा जाएगा और उसके बाद में काफ़ी लंबा शोक प्रोग्राम सेवा में पेश किया जाएगा। यादें दतल सेखर दत्ते की पासवेर कान बदीन रुंत 12:08। Dus in het volgende blok ben ik er niet. 8:12 dan ben ik terug. Heel kort met dit programma nog. Tommy Tarasha karte hai ki aap bharpoor mera saath denge. Prem Vivah ka ek nagma pesh karne ja raha hoon. Aur milte hain tamam suchnaon ke baad rond 12:08. Shailendra Singh ji aur Anuradha Padwal. From the movie Prem Vivah uit 1979. Ram Raj Natha ji ka प्रोड्यूस किया मूवी, बासु छतर जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी, फन मिथुन एंड बिन्या गोस्वामी।

रोटरडम के रहने वाले समस्त परिवार बहादुर बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार 1 सितंबर को दिनसदक 1 सितंबर को रोटरडम में 82 साल के आयु में लेफ्टाइट फॉर्म 82 यार रोटरडम के रहने वाले पति श्रीमान सुन तुलसी राम बहादुर के पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर के माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपुतो अल्बा गोंसालस के ननिया सास एमी एंड फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर राम चंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो रोटरडम आइसलमोंड लेयरवाट के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गया है। जिन लोग ज्यादा मारी बहादुर के नाम से जानते थे सूरीनाम में नीवेरखफोंडवेग मिस्र बोइट के जो रहने वाले थे। रोटरडम के रहने वाले समस्त परिवार बहादुर बहादुर के साथ ये सूचना को करें हैं कि बीते मंगलवार 1 सितंबर को 82 साल की आयु में लेफ्टाइट फॉर्म 82 यार रोटरडम में रोटरडम के रहने वाले पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर के पत्नी लड़कन आशा बॉयक उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो अल्बा गोंजालस के नन्हे सास एमी एंड फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर राम चंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो रोटरडम आइसलमोंड लेयरवाट के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गया है। जिन लोग ज्यादा मरी बहादुर के नाम से जानते थे अर्थी से विदाई लेने के लिए मौका है। शनिचर 5 सितंबर को शाम में 1 से लेकर 2 बजे तक खुद से बूसम सिंगल 35-35 रोटरडम में दाक्रिया को किया जाएगा। सोमवार 7 सितंबर की शाम में 2 बजे देला आन द वान मार्टलिंकवेग 101 XO1 रोटरडम में। जानकारी के लिए तारकन मृदिगे हैं 06-5155-0271। उजाला रेडियो के जरिए और भी मृत्यु समाचार हैं आप सुनने के लिए ध्यान दीजिए। कपिल ऑन द आइसल के रहने वाले समस्त परिवार बहादुर बहादुर के साथ ये सूचना को करें हैं कि बीते मंगलवार 1 सितंबर को रोटरडम में 82 साल की आयु में लेफ्टाइट फॉर्म 82 यार बेटी आशा बहादुर की माँ दामाद पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी परपुतो अल्बा गोंजालस की नन्हिया सास एमी और वैलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम आइसलमोंड लेयरवाट के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गया है। जिन्हें लोग ज्यादा मारी बहादुर के नाम से जानते थे सूरीनाम में नीवेरखफोंडवेग मिस्र बोइट के रहने वाले थे। कपेला ऑन द आइसल के रहने वाले समस्त परिवार आशा बहादुर बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार दिनसदक 1 सितंबर को 82 साल की आयु में लेफ्टाइट फॉर्म 82 यार कपेला ऑन द आइसल के रहने वाली बेटी आशा बहादुर की माँ दामाद पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी परपुतो अल्बा गोंजालस की नन्हिया सास एमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम आइसलमोंड लेयरवाट के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गया है। जिन्हें लोग ज्यादा मारी बहादुर के नाम से जानते थे और सूरीनाम में नीवेरखफोंडवेग मिस्र बोइट के जो रहने वाले थे। अर्थी से विदाई लेने के लिए मौका है 7-5 सितंबर को खुद से बूसम सिंगल नंबर 35 के शाम में 1 से लेकर 2 बजे तक इन रोटरडम रोटरडम में दाह क्रिया को किया जाएगा। सोमवार 7 सितंबर के शाम में 2 बजे से देला आन द वान मार्टलिंकवेग 101 रोटरडम में। जानकारी के लिए तारकन मृत दी गए हैं 06-5155-0271। उजाला रेडियो के जरिए और भी मृत समाचार है आप सुनने के लिए ध्यान दीजिए। खुश के रहने वाले समस्त परिवार बहादुर बहादुर के साथ ये सूचना को करें हैं कि बीते मंगलवार 1 सितंबर को 82 साल के आयु में इन लेफ्टाइट फॉर्म 82 यार रोटरडम में
खुश के रहने वाले स्वर्गीय ससुर रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास गुलबिया बहादुर मंगरलाल के पतों लीन बासदेव बहादुर बैया बहादुर सीता बहादुर इंद्र बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर संद्रा विलखर्स बहादुर स्वर्गीय पेटीपल बहादुर स्वर्गीय हरि हरप्रसाद बहादुर स्वर्गीय भगमानी जगेश्वर बहादुर के भाऊजी स्वर्गीय सुरुच प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छोटकी रीता लिन बहादुर की बड़की एरिका स्टूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन की बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोतदम ऐसलमोंद लैरवाट के रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गया है जिन लोग ज्यादा मारी बहादुर के नाम से जानते थे। खुश के रहने वाले समस्त परिवार बहादुर बहादुर के साथ ये सूचना को करे हैं कि बीते मंगलवार 1 तारीख सितंबर को 82 साल की आयु में लेफ्टाइट फॉर्म 82 रोतदम में खुश के रहने वाले स्वर्गीय ससुर रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पुत्र लीन बासदेव बहादुर बेया बहादुर सीता बहादुर इंद्र बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर संद्रा विलखर्स बहादुर स्वर्गीय पीर्तिपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर स्वर्गीय भागमणि जगेश्वर बहादुर के भाऊजी स्वर्गीय सूर्य प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छोटकी रीता लिन बहादुर की बड़की एरिका स्टूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन की बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोतदम ऐसलमोंद लैरवाट के रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गया है जिन लोग ज्यादा मरी बहादुर के नाम से जानते थे सूरीनाम में न्यू वेर खफोन वेख मिस्टर बोइट के जो रहने वाले थे। अर्थी से विदाई लेने के लिए मौका है खुद से बूसम सिंगल 35-35 रोतदम में जादादग 5 सितंबर को शनिचर 5 तारीख सितंबर को शाम 1 से लेकर 2 बजे तक दाह क्रिया को किया जाएगा। आने वाले सोमवार 7 तारीख सितंबर को शाम 2 बजे देला आन द वैन मार्टलिंग वेग 101 रोतदम में जानकारी के लिए तार के नंबर दिए गए हैं 06-51-55-02-71। समस्त परिवार जान पहचान से निवेदन है इस खबर को और दूर तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल है। यहां तक आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है मृत्यु समय। अभी थोड़ी देर में आप सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा शोक समाचार परिवार बहादुर की तरफ से। सुन वालों उजाला रेडियो के जरिए यहां से आप शोक समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए। गत मंगलवार 1 तारीख सितंबर को रोतदम ऐसलमोंद लैरवाट के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का 82 साल की आयु में इनका देहांत हुआ है रोतदम में। पहले सूरीनाम में न्यूवेर खफोन रह के रहने वाली थी मिस्टर बोइती के रहने वाली थी और इन लोग ज्यादा मरी बहादुर के नाम से जानते थे। इन्हीं की याद में आप सुनने को जा रहे हैं एक नहमा जो कि मांग की गए हैं रोतदम से पतिदेव श्रीमान सुन बहादुर की तरफ से। स्वर्गीय पत्नी की याद में दी न्यू जैन लीव फ्रॉ न 64 ह्यूलक मुद में सब उन्हीं की याद में प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सुनिए आप।

बहादुर सुखदेव का 42 साल की आर्मी में इनका देहांत हुए हैं। रोटरडम में पहले सूरीनाम में न्यूवेर गवोंडवेग मिस्टर बोइट के रहने वाले थे। इनकी याद में पतिदेव श्रीमान सुन बहादुर पत्नी की याद में पेश किए। रोटरडम आइसलमोंड लेयरवाट के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का 42 साल की आयु में 1 सितंबर को इनका देहांत हुआ है, जिन्हें लोग ज्यादा मारी बहादुर के नाम से जानते थे। इन्हीं की याद में कपल ऑन एसल से बेटी आशा बहादुर स्वर्गीय माँ की याद में दामाद पिम देदर स्वर्गीय सास की याद में अनिल और मारलीशा देदर स्वर्गीय नानी की याद में परपतो अल्बा गोंजालेस स्वर्गीय ननिया सास की याद में एमी और फैलरी देदर स्वर्गीय पर आजी की याद में पेश करें।

Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kerenivali, Srimati, Ramkumari, Bahadur, Sukdevka, Bayali, Salkiawi में देहांत हो गए हैं 1 तारीख सितंबर को रोटरडम में. जिन लोग ज्यादा मारी बहादुर के नाम से जानते थे और सूरीनाम में पहले न्यूवेर खफोनवेख मिस्र बोईती के रहने वाले थे, इन्हीं की याद में कपल आंद ऐसल के रहने वाली बेटी आशा बहादुर स्वर्गीय माँ की याद में, दमाद पेम देदत स्वर्गीय सास की याद में, अनिल और मारिलीशा देदत स्वर्गीय नानी की याद में, परपोतो आउबा गोंजालस स्वर्गीय ननिया सास की याद में, एमी और फेलरी देदत स्वर्गीय पर आजी की याद में पेश किए. मंगलवार 1 तारीख सितंबर को रोटरडम IJsselmonde लैरवाड़ के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गए हैं 42 साल की आयु में, लेफ्टिनेंट फ्रॉम 82 यार. मां की याद में बेटी आशा बहादुर मां के याद में पेश करें शोक समाचार में.

Mangerwaar, Ektarik, September ko. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kirehni, Wali, Sermiti, Ram, Kumari, Bahadur, Sukdeo ka, Bayali saal kya me di hand hoge hain. Rotterdam me. Aur pehle Suriname, nu weer gevonden weg, Mr. Boiti ke jo rehne wali thi. Beti, Asha, Bahadur, ma ke yaad me, nahma ko, mangke. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kirehni, Wali, Sermiti, Ram, Kumari, बहादुर सुखदेव का 42 साल के आयु में कल 1 तारीख सितंबर को देहांत हुए हैं. जिन लोग ज्यादा मरी बहादुर के नाम से जानते थे, बेटी आशा बहादुर मां के याद में पेश करें अगला.

0: कर भी मेरी दुनिया हो। I miss you forever.
1: Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kerenivali, Srimati Ram Kumari, Bahadur Sukdevka, Bayalisaal Kjaum in de leeftijd van 82 jaar, ik daar ik september Koinka die hand we hem, Ginny Lokziada, Marie Bahadur Keram Sejant het hem, bij hele Suriname mee. Nu weer gevonden weg, Mr. Boytike Jorani Valti. Beta, Boyke Bahadur, Swerge Maki Adme, Namako, Manke. उजाला रेडियो के जरिए और भी शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। रोटरडम IJsselmonde लेरवाड़ के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का 42 साल के आयु में निधन फॉर्म 82 यार मंगलवार 1 तारीख सितंबर को रोटरडम में इनका देहांत हुए हैं। इनकी याद में खुस के रहने वाले लीन बेया सीता इंदर सुभाष लिली और सांद्रा लिफ प्यारी प्यारी स्वर्गीय भाऊजी मरी बहादुर सुखदेव की याद में पेश करें।

Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kerenwali, Srimati, Ram, Kumari, Bahadur, Sukdeuka, Gutiktarik, Setemerko. Bij Ali zal ik jou in de leeftijd van 82 jaar. In de hand hebben. Jinlok Zada Marie Bahadur, Kinaamse Janute. Or Suriname met Pahle, niet weer gevonden weg, Mr. Boyti Kerenwali. Goes Kerenwali, Samas Pariwaar, Bahadur. Lin, Bea, Sita, Inder, Subhas, Lili, Or Sandra. प्यारी प्यारी भावजी स्वर्गीय मरी बहादुर सुखदेव की याद में पेश के प्रोग्राम में आखिरी नहमा सुनने को जा रहे हैं शोक समाचार में। रोटरडम IJsselmonde Leirwaard के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव का देहांत हो गए हैं 42 साल के आयु में लेफ्टेट फ्रॉम 82 यार। जिन लोग ज्यादा मरी बहादुर के नाम से जानते थे इनका देहांत हुए हैं रोटरडम में और पहले सुरीनाम में न्यू वेर गवोंडे वेग मिस्टर बोयती के रहने वाले थे। इनके याद में खुश के रहने वाले लीन बेया सीता इंदर सुभाष लिली और सांद्रा प्यारी प्यारी भावजी की याद में स्वर्गीय मरी बहादुर सुखदेव की याद में पेश करें।

Ujala Radio के जरिए आखिरी शोक समाचार अभी आपने सुने हैं। रोटरडम IJsselmonde लैरवाड के रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव के 42 साल की आयु में इन लेफ्टिनेंट फ्रॉम 82 यार देहांत हुए हैं मंगलवार 1 तारीख सितंबर को। जिन लोग ज्यादा मारिय बहादुर के नाम से जानते थे और सूरीनाम देश में नीवेर खवोंदवेग मिस्र बोईती के रहने वाले थे। खुश के रहने वाले समस्त परिवार बहादुर लीन बेया सीता इंदर सुभाष लीली और सौंद्रा प्यारी प्यारी भाऊजी स्वर्गीय मारी बहादुर सुखदेव की याद में नहमा को पेश किए। उजाला रेडियो के जरिए आपने आखिरी शोक समाचार सुने हैं। उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल है। यहां तक पेश किए गए हैं शोक समाचार उजाला रेडियो के जरिए। कल के प्रोग्राम में दिन में 12 बजे रात के 7 बजे आप फिर एक बार सुन लेना उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार या शोक समाचार।

हे रे लल्ला, हे रे लल्ला, झूमो जरा और झूमो नाचो जरा, शादी बनाने को देखो किस तो चला। शैलेंद्र सिंह जी, मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी, ये मस्ती भरी गीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर ये तीनों ने मिलकर गीत गाए हैं। फिल्म का नाम चाचा भतीजा और ये फिल्म 1977 का है। निहतीन सेवन एंड सेवन मनमोहन देसाई का डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रणधीर कपूर, जोगीता बाली, रहमान साहब जी, जीवन, अनवर हुसैन, इंद्रानी मुखर्जी, भगवान दादा दुर्गा खोते, रुपेश कुमार, केशव मुखर्जी और टुनटुन, इन दोनों का शादी हो रहे थे मूवी में और ये गीत गाया जा रहा था। 4 मिनट बाकी है मेरे प्यारे से 9:08 में। आज प्रोग्राम कुछ अलग सा हो गया, क्या करूं, प्रोग्राम में बहुत सारे शोक समाचार थे, यादें, तो यही है कारण। और प्रोग्राम या इकनी तलंगर हेलास, मैं प्रोग्राम 9 बजे तक सजाएंगे और अगले हफ्ते उम्मीद और आशा करते हैं कि एक नॉर्मल प्रोग्राम बना सकूंगा। वैसे तो कल मेरे प्यारे सुनने वालों, कल रात्रि को 8 बजे से 11 बजे सेवा करने चले आएंगे विद स्पेशल प्रोग्राम दिल की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, हियर ऑन यू आर, ये है बैक टू द फ्यूचर। आज 3 हिस्से का आज पहला हिस्सा है, शैलेंद्र सिंह जी का पहली बार बैक टू द फ्यूचर में इनका स्पेशल हम बना रहे हैं। और गाने कुछ हैं ऐसे जो काफी पॉपुलर है, इनकी आवाज में जो गाया गया है, और कुछ कम लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत नगमाएं। इसी तरह से हम 3 प्रोग्राम सजाएंगे और आप तक पेश करेंगे। ले चलते हैं आपको अगले मूवी की ओर, शैलेंद्र सिंह जी का एक और पॉपुलर ग्रेट सॉन्ग जो सदा जब भी चलेगा हम सुन सुन कर आनंद लेंगे। अमित खन्ना ने लिखा है गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, संगीतकार है बप्पी लहरी, शैलेंद्र सिंह जी के साथ लता मंगेशकर, फ्रॉम द मूवी चलते चलते 1976 निहतीन सेशन से इवन तक का जो फिल्म है, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है।

प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। लता जी और शैलेंद्र सिंह जी की आवाजें, अमित खन्ना जी का लिखा हुआ ये सुपर डुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये दोनों ने गीत मिलकर गाए हैं बप्पी लहड़ी के साज और संगीत पर। मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल मूवी चलते चलते जो 1976 का है, नीघतिन ससंसी मतलब से हमने जो निकाले हैं, सुंदर धर ने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है और विशाल आनंद, सिमी गढ़वल, तरुण घोष, नाजनीन जगदीश राज, डॉक्टर श्री राम लागू, दिनेश हिंगू और यंकी दास ने काम किए हैं। इफोनोडोलॉजी डनहाग डंग के वेल आपके ऐप के लिए अमस्टरडम सेंट्रम का प्रभात जी को भी हम धन्यवाद कहते हैं। रॉय रघुनाथ डंकीवेल फॉर ऑफ स्टेम या एक वेट यह ऐप नोट मयोलाइज डालता है और ऐसे ढेर है। एंड यामर दैट इट गेन फॉर सुपर प्रोग्रामाइज अंडर स्टोर का नेचुरली 100% हम चलेती। डंकीवेल आपके ऐप के लिए रॉय रघुनाथ।

Meneer en mevrouw, BHDJ uit Breda. Dhanyawad. Full loaded ham. और कुछ हफ्तों से प्रोग्राम हम सजा रहे हैं अब अलग वूंसदग दोनदग एंड सातदग और ऐसा ही चलेगा सुविशो तो बखिन अक्टूबर उसके बाद में कैसे प्लानिंग रही हम बता दें सुनील एटम सदम भैया डंकीवेल आपके ऐप के लिए धन्यवाद धन्यवाद और Den Haag का Mieke weer terug vanuit Zuur hier in Nederland. Dankjewel Mieke. En sterkte met, je weet wel. Andrew Orchitraji uit Maarsebroek. Dankjewel, dhanyawad aapke app ke liye. Behad khushi hai hum ki aap abhi tune kiye hue hain. Sushila Chandrika Singh ji uit Amstel Fame bhi jode hue hain Ujala Radio ke saath. और आनंद ले रहे हैं इस प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर से धन्यवाद आपकी ऐप के लिए और धन्यवाद शुक्रिया डंकीवेल कहेंगे आईफी जहांगीर uit Amsterdam die lekker druk bezig is maar toch mij niet is vergeten dankjewel Rotterdam Schiedam का रोहनी कल्लू जी दंकीवेल रोहनी कल्लू जी आपके ऐप के लिए enjoy you are enjoy the songs of Shailendra Singh और हेर वाल्डो और मार्गरेट जी आज स्वाग आप दोनों को भी धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया हम कहते हैं आप कैब के लिए मेरे प्यारे सुनो वक्त तो बहुत ही कम है मैं आपको ले चलता हूं एक प्यारा सा गीत की ओर एक भूला हुआ हीरा बिल्कुल ये एक भूला हुआ हीरा है जो मिलकर गीत गाए हैं हसरत जयपुरी जी और रविंद्र जैन और रविंद्र जैन की ही साज और संगीत पर वंस अगेन लता जी और शैलेंद्र सिंह फिल्म का नाम दो जासूस और ये 1975 का फिल्म है 1976 मैं बिजली हूँ तितली हूँ

मैं बिजली हूँ, तितली हूँ, खूबसूरत प्यार भरा नगमा लता जी और शैलेंद्र सिंह जी ने मिलकर गीत गाए हैं, और वो भी रविंद्र जैन के साज और संगीत पर, नगमा जो रविंद्र जैन जी ने हसरत जयपुरी जी के साथ मिलकर लिखा। और ये फिल्म का डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर भी नरेश कुमार, और खुद ही शैलेंद्र सिंह जी पर पिक्चराइज किया गया है ये नगमा, क्योंकि उनका पहला मूवी है वन फिल्म स्टार वर्ड मारायकान बेहतर सिंह द नकतीर। शैलेंद्र सिंह जी विद द ग्रेट राज कपूर, द ग्रेट शोमैन, जुबली सुपरस्टार राजेंद्र कुमार, भावना भट्ट, प्रेम चोपड़ा, अजीत सेन, अरुण ईरानी, फरीदा जलाल, कमर कपूर, इन सभी ने ये मूवी में काम किया है। दो जासूस। वैसे तो शैलेंद्र सिंह जी की आवाज तो ऋषि कपूर की आवाज भी थे, एंड शेकर इन द ईयर्स्ट फिल्म्स फन ऋषि कपूर, और उन पहले मूवीज में से एक फिल्म का नाम है रफू चक्कर। रफू चक्कर का एक नगमा गुलशन मावरा जी का लिखा हुआ आज के लिए निकाल रहा हूं। इगी जो शैलेंद्र सिंह जी मिलकर गाएंगे नाइटिंगेल आशा जी के साथ, और वो भी कल्याण जी आनंद जी के साथ और

किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। शैलेंद्र सिंह जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, गुलशन भावरा जी का लिखा हुआ नगमा, पॉपुलर सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं। कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर 75 नीहदीन वैवंसी का फिल्म रफू चक्कर से हमने नगमा को निकाले। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर नरेंद्र बेदी, मेरे प्यारे सिने वालों ऋषि कपूर, मीतू सिंह, आसरानी पैंटल, राजेंद्र नाथ, इन सभी का एक फिल्म है। अब की बार एक छलान लगाएंगे मेरे प्यारे सिने वालों, जाकर पहुंचेंगे 1992 नीहदीन त्वेनीहद फिल्म का नाम सपने साजन के, और समीर का लिखा हुआ नगमा रोमांटिक सॉन्ग अब की बार शैलेंद्र सिंह जी गाकर सुनाएंगे टुगेदर विद अलका याग्निक, और वो भी नदीम श्रवण की साज और संगीत पर। ये खूबसूरत गीत हियर ऑन यू आर।

दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो, मुझसे करोगी क्या तुम दोस्ती। ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी और अलका याग्निक, नदीम श्रवण की साज और संगीत पर। 1992 का फिल्म सपने साजन के, सपने साजन के से हमने यह नगमा निकाले। सुधाकर बोकारे फिल्म का डायरेक्टर और राहुल रॉय, करिश्मा कपूर, जैकी श्रॉफ, रीमा लागू, डिंपल कपाड़िया, अरुणा रानी, अलोकनाथ, गुलशन ग्रोवर, ब्रह्मचारी, दिनेश हिंगू, मुस्ताक खान और सुभा खोते, इन सभी का एक मूवी है। मेरे प्यारे सुनोल, अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं आखिरी गीत को पेश करने जाऊंगा। इस आखिरी गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे और आज आप सभी से जुड़ा होंगे, क्योंकि अगर जुदा नहीं होंगे तो कल मिलेंगे कैसे। आज जितने लोग भी साथ दिए हैं, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू लिवेल। आज प्रोग्राम छोटा ही रूप में सही, लेकिन फिर भी उम्मीद और आशा करते हैं जिस तरह से सजाए हैं, आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय की है, नगमाओं के साथ काफी आनंद ली है। कल रात्रि को हम सेवा में फिर हाजिर रहेंगे एकदम लाइव यूआरके स्टूडियो रोटरडम से 8 बजे रात्रि से 11 बजे, जबकि हम पेश करेंगे फिर एक बार एक स्पेशल दिल की आवाज। तो तब तक के लिए आ गया मेरे प्यारे सुनने वालों ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, हम फिर सजाने वाले हैं अगले हफ्ते 9 तारीख। एंड साथ रखू मन साथ रख बने करो मेरे प्यारे सुनने वालों, रात्रि में 7 बजे से 12 बजे 5 सितंबर को लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। मेरे प्यारे सुनने वाला, आखिरी नगमा हम निकालेंगे फिल्म सहरीला इंसान, जिसका नाम है सहरीला इंसान। फिल्म 1974 और फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपको हम सुनाने जाएंगे, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, शैलेंद्र सिंह जी गाएंगे राहुल बर्मन की साज और संगीत पर, और फिल्म ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी और नीतू सिंह का है। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज, टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

चांदनी रात है अभी आपने सुने हैं और भी खासकर पेश की गए हैं सागर मालिक के आवाज में। हम इंतजार कर रहे हैं op आनंद चंद्रिका सिंह। Dan zullen we het hebben over luchtige onderwerpen. Hadden niet gaan regen, of wat, of kiet toch een keer miscommunicatie, hoe is het toch? En dan meer nadrukkiger. Dus als je niet hem zegt van, als je hem lukt geen koffie chai, maar we hebben bijna elke dag koffie chai, maar ik heb hem lukt geen kam, ja dat hoor jij eigenlijk. Dus ja, het is altijd afwachten van koffie chai, regen naar regen. Maar hem lukt ze maar heel उजाला रहे हैं द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड और भी मुंबई बीच के साथ आनस्टांड ज़ादादाग 19 सितंबर में माउस म्यूब्रॉय की आवाज आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड पर। माउस म्यूब्रॉय के साथ शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉय के दाता दिन निजाम वागीत हुसैन के साथ। कॉप ये टिकट ऑफ टाइट फिया meervaart.nl और अगर आपके पास स्टास पास है ये है आमस्टरडम के बाजिंदों के लिए। फॉर द मेंस इन आमस्टरडम एंड ओमगेविंग आमस्टरडम के बाजिंदों के लिए ये खबर है। अल्स जाय एन स्टास पास है डन कॉस्ट योर कार्ड जो मार 3,50 €। स्टूर ये ईमेल फॉर एन कार्ड कर्तव्य खातिन तो के ईमेल कर रखे प्रिया नार कार्ड फेडकोप एट Dus als jij een stadspas hebt, of je 19 september een concert met Aapkoop Haglina hebt, wil je erbij zijn? Heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar 3,50 €. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Doe het snel, want bijna bargehega.

उजाला रेडियो हर काम काज के लिए चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl यू आर उजाला रेडियो तू जाने तो हम।